0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, दो नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
4: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
3: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अम्बाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
4: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस से बेस सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
3: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तीन दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से यह कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
3: Working to strengthen each other's
4: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
1: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
5: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाए।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम चार में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
7: हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
8: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या यह है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने एसआईआर से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, एसआईआर में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम संजय मट्टू। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off 2 new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. In Japan Open Badminton, PV Sindhu faces Chen Yufei of China in semi-final of women's singles in Tokyo, and in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab last evening. These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations have been transformed into modern passenger-friendly facilities. Redeveloped in the spirit of Virasat Bhi, Vikas Bhi, the stations incorporate elements reflecting local culture, heritage and architecture. On the occasion, Mr. Modi flagged off the Kartoli-Ambala train service, which will improve connectivity across Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. He also flagged off the Sant Ravidas Express between Amritsar and Varanasi, establishing a direct rail link between two of India's most revered spiritual

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के

0: क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
3: Congratulations in space for facilitating
1: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
3: इन दी हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी।
0: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
4: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में 2 दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होता।

0: वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आर्म फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
3: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
2: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
3: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
2: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
3: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं, जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
2: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण

0: संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ है अक्षित वैद्यान।
1: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, उड़ीसा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के दूसरे व्यक्तियों के अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
3: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज जो पहला गाना है वो आप सभी की फरमाइश पर वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे, छबड़ा जिला 12 राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो, राजस्थान जोधपुर से अशोक प्रेमलता और सुमित बाणिया, और ये चिट्ठी है पंचगवहाण उबारखेड़ से साहिबराव वेड़कर, अमोल मिस्त्री और आनंद निहां। इसके अलावा उल्लासनगर से पुरुषोत्तम और ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर, और पतरोड़ा गंगानगर राजस्थान से मंगल जनागल राही, रोशनी जनागल, अंकुर और डॉक्टर सुनील जनागल। आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम की पहली पेशकश है मुकेश की आवाज में पूर्णिमा फिल्म का गाना गुलजार के बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म ज्वेल थीफ से है लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोल हैं, सचिन देव बर्मन का संगीत और आप सभी की फरमाइश है। श्रीगंगानगर से निकीराम बांसीवाल, जॉनी बांसीवाल और धनराज बांसीवाल, हावड़ा नाजिरगंज नेपाली पारा से हमारे कुछ श्रोता हैं दीपक, स्वीटी, उषा, ज्योति, किरण, दिर्शा और रितेश लिंबू और इनका पूरा परिवार ये हावड़ा से। इसके अलावा घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, वंदना नगर इंदौर से ललिता नारायण खर्चे, संजना परी खर्चे, गणेश खर्चे, दीपिका, स्वाति और प्रयाग चौधरी और ये फरमाइश है रेखा, पूजा, नंदिनी, बबीता, शोभा रघुवंशी, स्वाति, इन सब की इंदौर से, राजस्थान जोधपुर से इन श्रोताओं का नाम पहले हो चुका है। तो सुनिए ज्वेल की फिल्म का ये गाना।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं मनचाही गीत कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में श्रोता हमें लिखते हैं तमाम देश भर से चिट्ठियां, और इन चिट्ठियों के जरिए हम ये जान पाते हैं कि कहां कहां श्रोता हमें सुन रहे हैं और कौन कौन से गानों की फरमाइश करना चाहते हैं। ये पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता और रिमझिम गुप्ता की चिट्ठी, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती जासमीन और प्रयागराज, पाहरा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंदूर, चंद्रकांत, प्रीति और छाया, छत्तीसगढ़ बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, रुद्र कुमार सारथी, वीरेंद्र कांत सारथी और ब्रजकांत सारथी, और इसके अलावा ये फरमाइश जालना से डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अशोक भूतेकर, गणेश और कार्तिक भूतेकर। बहुत ही सुंदर लेखनी में श्रोताओं की ये चिट्ठियां। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना, शर्मीली फिल्म का गीत नीरज के बोल।

मुंतजहीद कार्यक्रम की अगली पेशकश जो है उसकी फरमाइश आप सभी ने भेजी है, बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, राजाराम नगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, सलोजी महाजन और चीकू। ये चिट्ठी आई है खोखरिया बनाड रोड सूर्य नगरी जोधपुर से जबर सिंह फूलवाले, रुद्राक्ष मानू, दिनेश सोढ़ा, देवेंद्र सिंह की और राजेश जैन, अरुणा जैन, दीपक जैन, गौतम, बिट्टू, मट्टू, सारिका, बनिता, मनोज जैन और समता जैन ने हमें लुधियाना के मोहल्लापुर दंबा मंडी से चिट्ठी लिखी है। वारंगा फाटा से वैष्णवी मोरे, अश्विन मोरे, कुंडलीक और पांडुरंग मोरे की चिट्ठी है और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा की चिट्ठी। सितमगढ़ फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी और कीजिएगा सितमगढ़ फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल आरडी बर्मन की तर्ज।

और अब कार्यक्रम का अगला गाना जो धरती फिल्म से है, फरमाइश करने वाले श्रोता हैं सुकोडा रोडा गोला से गजानन कुंभार, पद्मावती, विशाल, ज्योति और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा बड़वाहा से अयांश रावल, पुष्पेंद्र और इंदिरा रावल, चांदुर बिस्वा से राम भाऊ, लक्ष्मण भाऊ, भारत, शत्रुघ्न नारायण, पंच गवहाण तेलहारा से साहेब राव, अमोल खालिक और इनके साथी, शेगांव से मोहम्मद अनीस मुहाल, मोहम्मद दानिश और मोहम्मद रिजवान। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें। हस्त जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन की तर्ज है।

0: इसी के साथ अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम खत्म होता है।
1: मनचाहे गीत।
2: मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हेलो हेलो नानी।
1: हाँ गुड़िया।
0: अरे हाँ हाँ मैं गुड़िया ही बोल रही हूँ, मुझे पता था आपका फोन आएगा।
1: हाँ अच्छा अच्छा जल्दी बता वो आया कि नहीं।
0: अरे रुकिए मैं खिड़की के पास ही जा रही हूँ, खिड़की तो खोलने दीजिए। बोलिए नानी, आपकी टाइम की सेंस बड़ी परफेक्ट है।
1: नानी किसकी हूँ?
0: आपका फोन आया, मैंने खिड़की खोली और मैं नीचे देख रही हूँ कि भूरे भी अपने ठिकाने पहुँच गया है।
1: अरे गुड़िया तो खिड़की पर आ भी गई फिर भी सामने वाले फ्लाईओवर का शोर नहीं सुनाई दे रहा।
0: ओफो नानी आप भूल गई लगता है, लॉकडाउन चल रहा है भाई, पूरा सन्नाटा पसरा है, शोर कैसे आएगा।
1: अरे बेटा मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि भूरे का डिनर हुआ कि नहीं।
0: आप भी ना नानी, डिनर तो हम करेंगे थोड़ी देर में। उफ, ये मैं क्या बोले जा रही हूँ, वैसे आप ठीक ही कह रही हैं, भूरे भी तो डिनर ही करेगा ना रात में।

0: अब भले दूध भात खाए या रोटी।
1: आज क्या मिल रहा है उसे, क्या लाया बेरा, दूध भात की ब्रेड?
0: आप उसे बेरा क्यों कह रही है? अरे वो तो उजला फरिश्ता है, रोज शाम अपने साथ भूरे के लिए पानी और खाना लाता है।
1: देखो गुड़िया, खाना जो बनाए वो खानसामा और जो खाना परोसे वो बेरा ही हुआ ना। अच्छा ये बता, तू उसे उजला फरिश्ता क्यों कह रही है?
0: अरे नानी, वो इसलिए कि या तो वो व्हाइट टी शर्ट पहन के आता है या उसकी टी शर्ट में थोड़ा बहुत व्हाइट कलर होता जरूर है, और काम काम तो वो एंजल जैसा ही करता है, तो हुआ ना उजला फरिश्ता।
1: बड़ी खोज खबर रखती है रे तू उसकी, हैं?
0: हाँ, और पता है दादी क्या कहती है, वो कपड़े उजले पहनता है, उसका मन भी उजला है, तभी तो हर रोज भूरे के लिए खाना लेकर आता है। पता है नानी, बारिश हो तो भी आता है, और दादी ने ही उसे ये नाम दिया है, उजला फरिश्ता, इनोसेंट एनिमल्स की हेल्प करने वाला एक एंजल।
1: अच्छा अच्छा अच्छा मेरी बातों की दादी, अब ये बता आया कि नहीं तेरा उजला फरिश्ता?
0: अभी तक तो नहीं आया नानी, पता है नीचे भूरे भी इंतजार में बैठा है।
2: अरे गुड़िया बेटा, गुड़िया आ जाओ बेटा, तुम लोग सब लोग खाना खाने के लिए तैयार हो गया, खाना टाइम हो गया।
0: ओके ओके मम्मा। अच्छा नानी, नीचे भूरा खाने की वेट कर रहा है, और यहाँ हमारे डिनर की भी कॉल आ गई, तो आपको बाकी रिपोर्टिंग में खाना खाने के बाद दूंगी। ओके बाय।
1: बाय बेटा।
2: सब लोग आ गए।
0: वाओ रायता, माय फेवरेट। मम्मी, और ये इतने बड़े डोंगे में आपने क्या ढक के रखा है? मैं देख लूं खोल के?
2: हाँ हाँ देखो देखो।
0: उफ, ये क्या, ये तो चावल दिख रहे हैं
2: जी,
0: और कैरेट, कैप्सिकम भी, ओ नो, बीट रूट, और वो भी इतने चिपके चिपके से। मम्मी ये बिरयानी है या खिचड़ी, वो भी बीट रूट वाली, या कौन खाएगा?
2: गुड़िया, लॉकडाउन में खाना मिल रहा है, शुक्र मनाओ।
3: वाह, ये चावल तो मेरे हिसाब से बने हैं, चबाने की जरूरत नहीं है।
4: लाइए भाई, हम भी तो चकले थोड़ा सा।
0: मम्मी, आप कुछ अच्छा नहीं बना सकती थी?
2: जिसने बनाया है ना, उन्हीं से पूछो तुम।
0: ओ नो, दैट मींस आज कुकिंग फिर पापा ने की है?
2: यस।
3: जिससे जो आता है वही तो करेगा। तेरे बाप से झाड़ू पोछा नहीं लगता, न ये कपड़े धो पाता है, न बर्तन। अब तेरी माँ भला कितना खटेगी, बेचारा खाना बना देता है, वरना मर्दों को सिर्फ हुकुम देने की आदत होती है। हाँ
4: अम्मा, एक तुम ही हो मेरी पार्टी में बस। हाँ। ये गुड़िया तो विरोधी पार्टी में चली गई लगती है, इससे तो सिर्फ गलतियाँ निकालना आता है।
0: क्या पापा,
2: आप बस करिए ना गुड़िया बेटा, लाओ मैं तुम्हारे लिए पराठा बना लेती हूँ, आ जाओ बेटा।
4: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, विरोधियों और असंतुष्टों को अपनी तरफ करने का अच्छा पैंतरा है।
2: जी हाँ वो तो है।
4: खाओ खाओ पराठे खाओ, वजन बढ़ाओ, हमें क्या है, बाद में मत कहने की बाय बाय सूरी नमस्कार नहीं हो रहा है।
2: तो पापा शुरू, बस करिए, है नहीं तो एक दिन खा लेने से कुछ नहीं होता।
4: अच्छा सच में?
2: हाँ
4: तो एक हमारे लिए भी बना दो।
2: अम्मा अम्मा देख लीजिए, अब आप देख रही है ना।
0: हाँ।
2: अपने लाडले से अपना खुद का बनाया खाया नहीं जा रहा है खाना, और आप उन्हीं के साइड ले रही
3: थी। अरे बहू, हम सब एक ही साइड में हैं, तू फिकर मत कर। अरे गुड़िया, ये गुड़िया तू ये बता, तेरी नानी क्या कह रही थी रे?
0: अरे दादी, पता है उनको भूरे की इतनी फिकर होती है, इतनी फिकर होती है ना, कि रोज शाम को जब तक उसके खाने की पूरी रिपोर्ट नहीं ले लेती, उन्हें चैन ही नहीं पड़ता।
3: अच्छा तो तू उन्हें पूरी खबर देते है?
0: और नहीं तो क्या, भूरे की स्टोरी है ही इतनी वंडरफुल।
3: अच्छा कैसे, लेकिन
0: आपको पता तो है सारी कहानी नानी।
3: अरे पर मैं भूल जाती हूँ ना रे, तू अपने नानी को जैसे प्यार से सुनाती है ना, वैसे ही जरा प्यार से मुझे भी सुनाना, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है रे।
0: अच्छा तो सुनिए, वो हमारी लाइफ में मेरे कमरे की खिड़की से आया।
3: खिड़की से आया? कमरे की खिड़की से? अरे हम 12वीं मंजिल पर रहते हैं, खिड़की से कैसे भला आया?
0: ओहो दादी, आपको कहानी सुननी है ना?
3: हाँ हाँ सुना सुना सुना।
0: हाँ तो खिड़की के नीचे, ठीक नीचे वो जो फ्लाईओवर है ना,
3: हाँ
0: वहाँ वो रोज शाम को आता है। दिन भर पता नहीं कहाँ रहता है, रात को कहाँ सोता है ये भी नहीं पता।
3: अरे तो तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं की?
0: ओहो दादी, लॉकडाउन में नीचे उतरना अलाउड नहीं है, तो फाइंड आउट कैसे करूंगी? हम तो बस खिड़की से ही देखकर खुश हो लेते हैं।
3: अरे इसमें खुश

0: सुनने की क्या बात है रे।
1: अम्मा अम्मा आपको कहानी सुनना है ना, तो बस सुनिए जो कह रही है गुड़िया।
0: हाँ हम तो सुन ही रहे हैं बहू, सुन रहे हैं।
2: हाँ, तो शाम को जब डॉगी फ्लाई ओवर पर पहुंच जाता है ना, तो थोड़ी देर में एक पर्सन आता है, वही आपका उजला फरिश्ता,
0: हाँ
2: और भूरे को कुछ खाने को देता है
0: रोज।
2: और नहीं तो क्या।
0: अच्छा
2: हम तो डेली देखते हैं और इसी की रिपोर्टिंग तो नानी को करते हैं।
3: अम्मा, इस कुत्ते को पहली दफा गुड़िया और इसकी माँ नहीं देखा था। अब देखा क्या था, मदद की शुरुआत भी इसी ने की थी अम्मा।
2: हाँ, रहता हमसे दूर है लेकिन है तो हमारे फैमिली मेंबर जैसा ही।
0: हाँ हाँ कुछ तो बताया था तुम लोगों ने, अब याद नहीं आ
3: गुड़िया,
0: रहा है।
3: याद करो यार वो रात कैसी थी है?
1: हाँ।
3: हम घंटों खिड़की से देखते रहे, लैंप पोस्ट के आसपास वो कभी इधर उधर चलता, कभी बैठ जाता, कभी खड़ा हो जाता। खड़ा रहता तो न जाने कितनी देर तक एक ही जगह पर खड़ा रहता। लॉकडाउन शुरू हुए अभी, क्यों अभी 3-4 दिन हुए
1: हाँ,
3: थे।
1: हाँ, बस इसी समय की तो बात है।
3: दहशत
1: हाँ।
3: फैली हुई थी, ट्रैफिक बहुत कम था, फिर भी कोई स्कूटर वाला निकलता तो कुत्ता उसकी ओर लपकने लगता। अरे साफ लग रहा था कि वो किसी का सहारा ढूंढ रहा है।
1: हाँ ये बात तो है, लेकिन कितने डरावने दिन थे। दुकान बंद, दफ्तर बंद, लोगों का आना जाना बंद, और मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि भाई मेरा किचन कैसे चलेगा। और हाँ देखिए, आप भी तो जानते ही हैं, हम लोग कभी राशन तो जमा करके हमने रखा ही नहीं था, तो चिंता लगी।
2: ओ मम्मा, भूरे की बात बताइए ना।
1: हाँ, अब खिड़की से देखते देखते अम्मा कई घंटे बीत गए। एक तो ऐसी ये सुनसान जगह, पैदल कोई आता जाता नहीं, और दोनों तरफ इतने बड़े दानवादार टावर, और बीच में इतना चौड़ा 4 लेन वाला फ्लाईओवर। इतने बड़े महानगर के इस फ्लाईओवर के दोनों तरफ के टावरों में अम्मा 1000-2000 फ्लैट तो होंगे, पर इनके ठीक नाक के नीचे सूखी नदी जैसा फ्लाईओवर, जहां न आदम चाट। और पहले तो दिन भर बरसाती नदी की तरह ट्रैफिक से भरा रहता था, पर लॉकडाउन में तो जैसे भूतों का डेरा बन गया है। हमें तो लग रहा था कि ये बेचारा पिद्दू सा तो है, इतनी अकेली जगह पे भटक कर पहुंच गया, और अब उसे यही नहीं पता चल रहा था क्यों जी कि कहां जाए, कैसे करें और कैसे बस्ती में पहुंचे।
0: ए बहू, तू भी क्या क्या बोले जा रही है।
1: हाँ अम्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप जरा सोचिए सोचिए जरा सा, ये 30-30 मंजिला पर्वत खड़े हैं धरती की छाती पर इनके अंदर की दुनिया कोई और ही है। इन्हें जमीन नहीं दिखाई देती, बस काम से काम रखते हैं इसमें रहने वाले।
0: बहू हम भी तो ऐसे ही टावर में रहते हैं ना।
1: हाँ तो अम्मा हम भी तो उनके ही जैसे हैं ना, हम भी तो सिमटे रहते हैं।
0: हाँ।
1: पर उस दिन, हाँ अम्मा उस दिन न जाने कैसे हमारी भी नजर नीचे झुक गई, वरना दोनों तरफ के टावर में लोग ही लोग हैं, लेकिन उन्हें नहीं दिखाई पड़ा, बस हमें दिख गया ये बेचारा।
3: अरे हो सकता है और भी लोगों ने देखा हो, पर हिम्मत ना पड़ी हो कुछ करने की। अब तुम्हें याद है ना, हम भी तो घंटों देखते रह गए थे उसको।
1: हाँ वो तो है, लेकिन हमें भी तो नहीं समझ में आ रहा था ना कि क्या करें, कैसे करें, कैसे इस पिल्ले को पुचकारे बचाए और कैसे लेके आए। और याद है ना यहाँ से कैसे हमने ब्रेड का टुकड़ा फेंका था।
3: हाँ।
1: लेकिन वहाँ कैसे पहुँचता, इतनी दूर था।
3: तब अम्मा हमारी इस गुड़िया ने ही आइडिया दिया। हाँ?
0: क्या घर लाने का?
3: अरे नहीं अम्मा, घर लाए होते तो मालूम नहीं चलता क्या। अरे जाकर उसे कुछ देने का, और इसने मुझे अकेले जाने भी नहीं दिया, क्यों याद है ना तुम्हें।
1: हाँ, हाँ,
3: हाँ, गुड़िया उस रात क्या हुआ था याद है?
2: पापा पापा पापा।
3: अरे क्या है बेटा, क्या हो गया?
2: पापा जल्दी इधर आइए, जल्दी आइए तो।
3: अरे क्या है बताओ
2: पापा,
3: तो
2: पापा देखिए ना, वो नीचे बेचारा कितना टायर्ड और हंगरी लग रहा है। आई थिंक ही इज लॉस्ट।
3: हाँ भूखा और परेशान है लगता, कहीं से भटक के आ गया।
2: यहाँ से देखते रहने से कुछ नहीं होगा, वी मस्ट डू समथिंग।
3: अरे हम क्या कर सकते हैं भाई।
2: पापा क्या हम उस बेचारे पपी को कुछ खाने को दे आए, प्लीज पापा।
3: इस समय लॉकडाउन में
2: प्लीज पापा।
3: बेटा कर्फ्यू लगा हुआ है, रात का टाइम है, नहीं नहीं नहीं नहीं जा नहीं सकते।
2: अरे पापा
1: ठीक कह रहे हैं,
2: कुछ नहीं होगा मम्मा, कुछ नहीं होगा। अब देखिए तो पता नहीं कितने दिन से भूखा है, बेचारा मर जाएगा।
3: देखते हैं भूखा तो है, सोचने दो।
1: हाँ।
3: अच्छा एक काम करते हैं, मैं चला जाता हूँ। हाँ, कुछ दे आऊंगा ठीक है। तुम एक काम करो, कुछ ब्रेड व्रेड पड़े हो तो दे दो कुछ।
1: हाँ हाँ बिल्कुल देती हूँ मैं। ऐसा करते हैं कि पानी भी

0: दीदी ले जाइए और ये बिस्किट भी ले जाइए, है ना।
1: हाँ
0: और लेकिन रुके रुके रुके, ऐसा करती हूँ मैं रोटी बना के लाती हूँ फटाफट, है। लीजिए ये सामान हमने सब थैले में रख दिया, ठीक है। ये देखिए पानी है ना और रोटी, दोनों चीजें हैं। और ये सामान रख दिया है, उसको पानी वानी पिला दीजिएगा। और मास्क मास्क कहाँ है आपका?
1: अरे हाँ लगा लिया है।
0: सैनिटाइजर रखिए भाई।
1: अरे रखा है भाई।
2: अरे रुकिए रुकिए, अरे मुझे भी तो जाना है, मुझे उसे पास से देखना है।
0: तुम वहाँ क्या करोगे?
1: अरे कह रही है तो जाने दो ना यार,
0: कमाल है आप तो।
1: तुम डरोगी तो नहीं ना?
2: नहीं नहीं पापा बिल्कुल नहीं।
1: हाँ तो चल चल चल,
0: डरोगी नहीं, ये क्या है
2: मम्मा प्लीज।
1: चलो चलो चलो, लिफ्ट बुलाओ और तुम दरवाजा बंद कर लेना अंदर।
2: हाँ हाँ पापा आइए।
3: कृपया दरवाजा बंद कीजिए।
1: अच्छा ठीक है, दरवाजा ठीक से बंद करना।
0: ठीक है ठीक है, ध्यान रखना अपना। तो बोल
3: कृपया दरवाजा बंद कीजिए।
0: अम्मा ये लीजिए, आप ऐसा करिए दवा ले लीजिए सोने के पहले वाली, और ये हल्दी वाला दूध भी पी लीजिए।
2: बहू क्या बात है, बड़ी हड़बड़ी में दिख रही है। बाहर ये आवाजें कैसी आ रही थी बहू?
0: अरे वो बाप बेटी नीचे गए ना अम्मा। अरे अम्मा आप दूध पी के सो जाइए।
2: इतनी रात को लेकिन क्या हुआ, सब ठीक तो है ना बहू?
0: अरे अम्मा आप फिक्र मत कीजिए, दूध पीजिए और सो जाइए, वो लोग आ जाएंगे थोड़ी देर में।
2: पता नहीं यहाँ क्या क्या चलता रहता है।
0: मैं सोचती हूँ खिड़की के पास जाकर देखती हूँ, पता नहीं पहुंचे कि नहीं वो लोग। हाँ तो पेड़ बीच में आ रहा है, लगता है अभी पहुंचे नहीं। क्या करूँ, बड़ी चिंता। मैं सोचती फोन कर लेती हूँ। हेलो, अरे तो फोन ही नहीं उठा। हेलो हेलो गुड़िया।
2: हेलो हाँ मम्मा,
0: तुम लोग अभी तक पहुंचे ही नहीं।
2: अरे मम्मा उड़कर थोड़ी ना पहुंच जाएंगे, पैदल चल रहे हैं भाई। और पता है मेन गेट पर सिक्योरिटी वाले बाहर ही नहीं जाने दे रहे थे।
0: क्यों भला?
2: कितना समझाना पड़ा उन्हें, और आज बाहर हवा भी चल रही है।
0: हवा?
2: और सड़क पर बहुत सारे डॉग्स हैं मम्मी, सब इधर से उधर दौड़ रहे हैं। अच्छा आप फोन रखिए, आप खिड़की पर ही है ना?
0: हाँ हाँ मैं यही हूँ।
2: हाँ तो हम पहुंचेंगे तो आपको दिखे जाएंगे, आप बस वेट करिए।
0: अच्छा
4: बहू बहू आ गए वो लोग क्या?
0: अरे अम्मा आप यहाँ आ गई, अम्मा आप फिकर क्यों कर रही हैं, वो लोग आ जाएंगे, आप आराम कीजिए।
4: अरे आराम कहाँ से होगा बहू, इस कोरोना का ऐसा डर बैठ गया है कि सपने भी बुरे बुरे आते हैं। इतना डर तो आजादी मिलने के दिनों में भी नहीं लगा था।
0: आजादी? अम्मा आजादी मिलने पर डर क्यों भला लगा, और मतलब आप तो उधर से आई भी नहीं थी फिर।
4: आजादी मिलने का नहीं, हाँ। जो मारकाट मची थी उस वक्त उसका डर, हम कहीं से उजड़ कर नहीं आए थे। पर आतंक ऐसा था कि अब हम क्या कहें।
0: अम्मा आपकी उम्र क्या थी उस समय?
4: अरे वही 5-6 साल की रही होंगी। हम बच्चों को घर में बंद कर दिया गया था, सबको डर था कि लड़कियों को उठा ले जाते हैं। पर आज का वक्त ये तो बहुत ही डरावना है, किसी को हम छू नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, सैर करने तक हम नहीं जा सकते।
0: अरे अम्मा वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको क्या, आप तो पहले भी कहीं सैर वैर करने नहीं जाती थी भाई।
4: पर डर का साया तो 2400 घंटे है ना, और ऊपर से ये मुआ टीवी मरीजों की गिनती, मरने वालों की गिनती ऐसे बताता रहता है जैसे मौत का खेल चल रहा हो। इतने बीमार पड़ गए, इतने मारे गए।
0: अरे अम्मा अम्मा अम्मा अम्मा आप घबराइए मत, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा शांत रहिए।
4: हाँ।
0: मैं खिड़की से देखती हूँ कि वो लोग पहुंचे कि नहीं पहुंचे, है ना?
4: हाँ हाँ देख देख,
0: ठीक है
4: आ जाए तो जरा मुझे बता देना।
0: गुड़िया गुड़िया पहुंच गए तुम लोग? हाँ हाँ मैं खिड़की की तरफ ही आ रही हूँ। हाँ लो मैं आगे खिड़की पर, अब रुको। हेलो अरे फोन मत बंद करना। हाँ हाँ हाँ मैं देख रही हूँ। अरे पर आवाज तो बेटा फोन पे ही सुनाई देगी ना। अरे अम्मा आप, हाँ लो दादी भी तेरी यहीं आ गई। अम्मा देख रही हैं ये लोग नीचे ही खड़े हैं, पहुंच गए उस बेजुबान प्राणी के पास।
4: हाँ बहू एक मिनट, मुझे भी तो आगे आने देना, खिड़की के पास आने दे जरा।
0: हाँ अम्मा ये हम कुर्सी यहाँ रख देते हैं, आप यहीं बैठिए, आइए आइए बैठिए। मैं फोन को भी स्पीकर पर ऑन कर देती हूँ।

0: अम्मा आप लोग को भी ना इन लोगों की आवाज सुनाई दे, सब बातें पता चल जाए। गुड़िया गुड़िया सुन, पहले उसे पानी पिलाओ।
1: हाँ मम्मा। मम्मा आप देख रहे हो,
0: हाँ
1: हम लोग
0: हाँ
1: जो कटोरा लाए थे ना, मैंने
0: हाँ
1: उसमें पानी डाल दिया। मम्मी देखो ना कैसे पूंछ हिला रहा है और डर भी रहा है। आ गया आ गया, पानी के कटोरे के पास आ गया वो।
2: अरे लग रहा है रोटी भी खिला रहे
0: हाँ
2: हैं।
0: हाँ अब पर अम्मा रोटी सूंघ के तो पीछे हट गया।
2: अरे डर रहा होगा ना शायद।
1: मम्मा इसे ना बहुत प्यास लगी है, आप देख रहे हो कितने तेज तेज पानी पी रहा है ये।
0: हाँ पता नहीं कब से प्यासा था। और गुड़िया मेरा तो मन कर रहा है कि उसे पुचकारूं, प्यार करूं, छोना सा तो है।
3: पुचकारने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है मैडम।
0: हाँ
3: तुम लोग आसमान में टंगे हो।
1: आसमान नहीं स्वर्ग में बैठे हैं।
2: हाँ बड़ा स्वर्ग, स्वर्ग में बैठे हैं। अरे कैदी हैं कैदी, माचिस की डिबिया में। हाँ
3: खुद को खुशकिस्मत समझो अम्मा, लाखों करोड़ों में मिलती है ये माचिस की डिबिया।
0: भाई कमाल है, इतनी दूर खड़े हैं फिर भी चैन नहीं है। बस बहस करा लो इनसे जब चाहो तब।
3: बहस नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बयान कर रहा हूँ।
0: अच्छा पहले आप उस जो बेजुबान प्राणी के लिए गए ना उसकी सेवा करिए, और जरा फिर ये बताइए इतनी देर कहाँ भटक रहे थे आप दोनों। 15 मिनट का रास्ता पूरे 2 घंटे लगाए आप लोगों ने।
3: जमीन आसमान का फर्क यही होता है मैडम, समझे आप? मतलब हम समझा दें आपको, जमीन आसमान का मतलब यहां जहां हम खड़े हैं वहां पहुंचने के दो बड़े मोड़ हैं। जब हम चलने लगे तो पहले सुनसान रास्ता आया, डरावना, अंधेरा, तेज हवा चल रही थी, कागजों, प्लास्टिक और तमाम चीजों का कचरा उड़ने लगा, गलियों से कुत्ते निकलकर भौंकने लगे, छीना झपटी करने लगे, अजीब सा अंधड़ चलने लगा, कूड़े कचरे की बारिश होने लगी, रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था।
0: क्या कह रहे हैं आप, हमें तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ, न हवा न बारिश।
3: कह तो रहा हूं जमीन पर हालात कुछ और ही होते हैं।
0: अरे क्या ऐसा है बोले जा रहे हैं, आप गुड़िया को फोन दीजिए आप।
2: अरे बहू क्यों गुस्सा कर रही हो?
0: अरे अम्मा आप रुकिए, गुड़िया गुड़िया ये पापा तुम्हारे क्या कहे जा रहे हैं।
1: हाँ मम्मा सच में बहुत डरावना एक्सपीरियंस था। हाँ सुनिए तो, फिर पहला मोड़ आया तो वहाँ वहाँ बहुत लोग थे। लोग क्या थे, प्रोसेशन जैसा ही था, एक जुलूस। लोग बच्चे बूढ़े मर्द औरतें सिर पर गठरियां उठाकर चले जा रहे थे, पैदल साइकिलों पे, साइकिल रिक्शा पे, किसी भी तरह बस चले जा रहे थे। रादर दे वर रनिंग, यू नो, रनिंग अवे फ्रॉम सिटीज ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट मामा, टू देयर नेटिव प्लेसेस मामा, दे वर एस्केपिंग, माइग्रेटिंग।
0: अरे ये सब तो टीवी पर आता है, प्रवासी मजदूर अपने घर को लौट रहे हैं और क्या।
1: हाँ टीवी जैसा ही पर एकदम रियल लाइव जिंदा। एक बच्चा सिर पर बैग उठाकर चला जा रहा था।
0: अच्छा
1: मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, उसने रिप्लाई ही नहीं दिया, भाग गया। पता है मम्मी, एक अंकल थे बूढ़े से, नंगे पैर मम्मा।
0: अच्छा
1: और उनके पैरों में चोट लगी थी। पता है मम्मा कितना ब्लड आ रहा था, और पापा को इतना वर्ड मैंने कभी नहीं देखा मम्मी।
0: अच्छा
1: जितने वो उस सीन को देखकर हुए। एंड यू नो
0: क्या,
1: यू नो पापा ने क्या किया?
0: क्या
1: पापा ने अपने स्लीपर्स उन अंकल को दे दिए मम्मा।
0: अच्छा
1: अब देख सकते हो पापा उसके बाद नंगे पैर चल रहे हैं।
0: हैं? हाँ हाँ हैरान, सच में नंगे पैर ही हैं। अरे अम्मा अम्मा देखिए तो जरा सा, इन्होंने तो
2: हुआ?
0: अरे अम्मा ये देखिए तो, इन्होंने स्लीपर अपनी दे दी किसी को।
2: अरे
0: हाँ इनके पैर दुख रहे होंगे गुड़िया।
2: कोई बात नहीं कोई बात।
0: अरे गुड़िया गुड़िया पापा को फोन दो। हेलो हेलो।
3: हाँ हाँ बोलो क्या हुआ।
0: अरे आप नंगे पैर हैं, सड़क चुभ रही होगी आपको।
3: नहीं नहीं आज तो जमीन को फील कर पा रहा हूँ। जानती हो जिंदगी को इस तरह कभी नहीं देखा, जिंदा बचा रहने की इच्छा का परम रूप, चरम रूप, जिजीविषा शायद इसी को कहते होंगे। ये लोग इस अंधेरे वक्त में दिखे, इन्हें एहसास हो गया कि इन्हें कोई नहीं बचाएगा, न साहूकार न सेठ, ना सरकार, ना अमीर ना गरीब, खुद ही खुद को बचाना होगा, अपने ही पैरों पर भरोसा करना होगा। ये लोग न जाने कब से चल रहे हैं, और इन लोगों को न जाने कब

0: तक चलते रहना है।
1: ये कौन लोग हैं?
0: यही तो विडंबना है। ये लोग हमारे ही शहरों में थे, हमारे शहर इनके ही बनाए हुए थे, ये शहर इनके चलाए ही चल रहे थे, पर ये आज तक कहीं दिखाई नहीं दिए। हमारे लिए इनका अस्तित्व ही नहीं था। ये हमारी ही तरह हाड़ मांस के जिंदा इंसान है।
1: हाँ, आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो लगता है आपने कोई सपना देख लिया है, और वो भी जागते हुए।
0: ये हमारे जैसे लोगों के लिए सपना ही है, कल्पना से भी परे, पर हकीकत। जमीन पर उतर कर ही इसे जाना जा सकता है। अरे जानती हो, हमारा डर तो दाल रोटी के साथ सब्जी न मिलने का डर है।
1: हाँ।
0: काम वाली नहीं आएगी तो उसके बगैर काम कैसे चलेगा, इसका डर है। पर पता है
1: क्या?
0: इनका डर भूखों मर जाने का डर है। इन्हें यही डर है कि जिंदा बचेंगे कि नहीं। इन लोगों ने इसे भोगा है, मैंने नहीं भोगा, सिर्फ करीब से देखा है और तहल गया हूं, अंदर तक तहल गया हूं।
2: सच पापा, बड़ी वियर्ड रात थी वो। ओ माय गॉड, आज भी याद करके गूजबम्स हो जाते हैं।
3: क्या गूज हो जाते हैं? क्या बक रही है?
0: अरे अम्मा, रोंगटे खड़े होने को अंग्रेजी में गूज बम्प कहते हैं। अरे अम्मा, तुम इसे कभी कभी अपनी भाषा भी समझाया करो यार।
3: हाँ हाँ
2: पापा, लेकिन उस रात पप्पी को जो पानी पिलाने का एक्सपीरियंस था ना, वो मेरी लाइफ का दी बेस्ट एक्सपीरियंस था।
3: हाँ, तभी तो तुमने ढिंढोरा पीट दिया, हाय हाय अनाथ कुत्ता है, मर जाएगा।
2: अरे
3: मर
2: नहीं दादी, मैंने तो बस सोशल मीडिया पर शेयर किया था। मुझे डर लग रहा था कि हम इतनी दूर रोज रोज थोड़ी ना जाएंगे उसे खाना खिलाने।
3: हाँ, तो इसीलिए तो आ गया ना तुम्हारी मदद करने के लिए वो उजला फरिश्ता।
2: सच्ची? और तब से देखो वो पपी, अरे जिसे आप भूरे कहती हैं,
3: हाँ,
2: दिन भर पता नहीं कहाँ रहता है, लेकिन रोज शाम को फ्लाईओवर पर आ जाता है ठीक हमारी खिड़की के नीचे।
3: हाँ।
2: और आपको पता है एक लेन जो खाली रहती है ना, वहीं पर, और वो पर्सन वहीं आकर जॉगिंग करता है। पहले भूरे को खाना खिलाता है, फिर अपना मोबाइल चेक करता है, फिर 10 चक्कर यहाँ से वहाँ लगाता है। और पता है ये भूरे लाल उसके आगे पीछे नाचते कूदते रहते हैं। पता है दादी, बारिश हो जाए ना तो भी इन दोनों की रूटीन नहीं टूटती।
4: अरे अम्मा, जब से ये भूरे को इन्होंने क्या देख लिया, उसकी सेवा क्या करने लगी, बस सोते जागते बस भूरे की कहानी, भूरे की कहानी। दादी को सुनाएंगी, फिर नानी को सुनाएंगी। भाई,
0: अरे तुमको याद नहीं उस दिन पेरेंट्स मीटिंग के बाद जब तुम वापस आई तो तुम्हारे साथ सहेलियां भी आई थी तुम्हारी?
4: बिल्कुल।
0: उनको उनको दिखाने बैठ गई, उनको बताने लगी, उनको ले गई अपने साथ कि चलो हमारे साथ हमारे भूरे को देखो।
4: और वो तो उसके संग संग उजले फरिश्ते को भी देखो। ठीक है, बेजुबान प्राणी की सेवा तो हम सबको करनी ही चाहिए।
0: हाँ, बिल्कुल सही बात है, प्राणी की सेवा करना परम धर्म है। और ये जो इस समय कोरोना का समय चल रहा है, इसमें ये सारी चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये बेजुबान जानवर आखिर हमारे ही तो भरोसे हैं, तो ये करना बहुत जरूरी
4: है। बस बस बस, शुरू हो गया ये, इनको मौका मिला गुड़िया, और तुमने मौका दिया और पापा शुरू हो गए। अच्छा सब लोग बस करो, और गुड़िया चलो आओ, सब पराठे खा लो, आ जाओ आ जाओ।
2: क्या मम्मी पापा, आप भी ना? अरे भूरे तो हमारा हीरो है, आप लोग भी ना? हाँ। ओह नो, देखो ना बातों में तो मैं भूल ही गई, आज भी आ गया होगा अब तक, और नानी भी मेरा वेट कर रही होंगी। अरे मुझे उन्हें रिपोर्ट देनी है ना भाई, मैं तो जा रही हूँ खिड़की पर। हेलो हेलो नानी।
5: गुड़िया,
2: अरे आप जाग रही हैं?
5: हाँ बेटा, तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ।
2: इज इट? क्या बात है,
5: जल्दी जल्दी बता, क्या वो आया? क्या क्या कर रहा?
2: हाँ हाँ नानी, अब सुनिए तो इत्मीनान से, मैं आपको पूरी रिपोर्टिंग दूंगी, पूरी गुड़िया रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम खिड़की, आप बस सुनते जाइए। हाँ तो नानी, मैं देख रही हूँ कि उजला फरिश्ता आ चुका है, उसने अपने बैग से कुछ निकाला। अब वो रोटी है या ब्रेड ये तो पता नहीं चल रहा है यहाँ से, लेकिन भूरे लाल भी जल्दी जल्दी खा रहे हैं इतना दिख रहा है। अब खाना खत्म भूरे लाल का, और भूरे की मस्ती शुरू। उजला फरिश्ता अब तेजी से सैर कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, और ये भूरे लाल कभी उसके आगे कभी

0: उसके पीछे उछल कूद कर रहे हैं। नानी आप बस सुनती चलिए। और ये मैं क्या देख रही हूँ? ओहो, भूरे ने उछल कर फरिश्ते की पैंट पकड़ ली और पैंट छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए उजला फरिश्ता। ओह, मैं कह सकती हूँ नानी कि भूरे बड़ा खुश है, और नानी भूरा खुश है तो मैं खुश हूँ, और मैं खुश हूँ तो नानी आप खुश हैं, है कि नहीं?
1: बिल्कुल खुश।
0: तो नानी आज की रिपोर्टिंग के बाद अब तो आपको नींद आएगी ना?
1: हाँ बेटा, जरूर आएगी।
0: तो ठीक है, आज आप सो जाइए आराम से, इत्मीनान से। मैं कल शाम को आपको फिर कॉल करके रिपोर्ट करूंगी। ओके, गुड नाइट नानी, बाय बाय।
2: गुड नाइट गुड़िया, बंद करो बेटा फोन अपना, इधर आओ, देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। तुम्हें खिचड़ी टाइप बिरयानी अच्छी नहीं लगी थी ना उसे?
0: हाँ।
2: तो जानती हो मैंने क्या किया?
0: क्या बताया पापा?
2: दूध लाया।
0: हाँ?
2: दूध तो मिल रहा है लॉकडाउन में,
3: लेकिन मुझे दूध अच्छा नहीं लगता।
2: मालूम है मुझे, इसीलिए मैंने उसका छेना बनाया।
0: क्या बात है!
2: और छेने के बाद उसके संदेश बनाए।
0: इज इट
2: बंगाली संदेश?
0: ओ वाओ पापा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
2: तो मीठे मीठे संदेश खाओ, और हाँ अपनी मम्मी को भी खिला देना, हमेशा कहती ना कि यही खाते रहते हैं हमेशा।
0: वाओ, यू आर ऑसम, यू आर ग्रेट।

अभी आप सुन रहे और धे अनूप सेठी का लिखा नाटक जमीन आसमान। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का पात्र सहित परिचय इस प्रकार था। माँ रेणु चतुर्वेदी, गुड़िया आकांक्षा सिंह, दादी ममता सिंह, नानी अनुश्री पाठक और पापा अमरकांत दुबे। संगीत संयोजन और तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी, निर्देशक अमरकांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
4: सुनिए।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुनने वाले हैं जानी मानी राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सीमा जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विविध भारती पे एक बार फिर से मैं आई हूँ और आप लोगों से रूबरू हूँ।
2: जी, आपने थिएटर किया, दूरदर्शन की दुनिया भर के सीरियल्स बनाए, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्में बनाई, आपने फिल्में भी बनाई। फिल्में बनाने का विचार कैसे आया?
3: देखिए, क्या है, कला एक नदी है
2: जी,
3: तो नदी जब अपने स्रोत से शुरू होती है तो बहुत छोटी होती है, फिर आते आते धीरे धीरे धीरे और उसका जो गंतव्य है, डेस्टिनेशन है, वो समुद्र होता है। तो फिल्म जो है ना, समुद्र है
2: जी,
3: तो वहां आना ही था। मुश्किल होता है क्योंकि फिल्म में बहुत पैसे की जरूरत होती है, फिल्म का जो कैनवास है हर तरह से बड़ा होता है,

0: लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे चांस मिल गया फिल्म बनाने का, और उससे ज्यादा सौभाग्यशाली ये रही कि मेरी तरह का सिनेमा जो ऑफबीट है, एक नई तरह का, जैसे मैंने आपको बताया हार्ट मेरी पहली फिल्म थी, उसमें मैंने शारदा वाला कैरेक्टर तो लिया ही है, जो वो एक गांव की लड़की है जो बिक रही है, और उसके साथ मैंने एक कैरेक्टर लिया है जो पास्ट की लड़की है, बुद्ध पीरियड की लड़की है, उससे पहले की लड़की है, जो तब की है जब भी बिकती थी महिलाएं, स्त्री, तो वो उसकी आत्मा इससे मिलती है, पास्ट और प्रेजेंट को मैंने दोनों
1: को मिलाया है
0: और वो कहती है मैं तब तक मुक्त नहीं होंगी जब तक तू मुक्त नहीं होगी, तू अपनी मुक्ति देख, तो वो उसको वो प्रेरणा देती रहती है। तो इस तरह का सिनेमा बनाने का सौभाग्य मिला मुझे, और काफी इंटरनेशनल इसको अप्रिसिएशन भी मिला फिल्म को,
1: काफी चर्चा हुई इन फिल्मों की, और इसलिए मैं आपसे ये भी जानना चाहती थी कि मिस्टर कबाड़ी और द वीकली बाजार जैसी ऑफबीट फिल्मों का आपने निर्देशन किया, तो क्या अनुभव रही ये फिल्में बनाने के?
0: हार्ट द वीकली बाजार का तो अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि सारे कलाकार बहुत मन से काम कर रहे थे, दिव्या दत्ता थी, अर्चना पूरन सिंह थी, यशपाल शर्मा, मुकेश तिवारी, ये सब लोग थे, और म्यूजिक भी बहुत अच्छा था, अशोक चक्रधर ने गीत लिखे थे, अली गनी जो है पद्मश्री हैं अभी, उन्होंने संगीत दिया था, तो वो तो बहुत ही अच्छा रहा। मिस्टर कबाड़ी जो थी वो कॉमेडी फिल्म थी
1: जी।
0: लेकिन एक गरीब आदमी जब अमीर हो जाता है तो उसकी क्या त्रासदी होती है, गरीब जब तक रहता है तो कोई दुख नहीं है, अमीर होते ही सारे दुख शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को उन अमीरों में शामिल देखना चाहता है, और जो अमीर हैं वो अपनी क्लास कॉन्शियस हैं, इलीट क्लास वालों में रहना चाहता है, वो क्लब में जाना चाहता है, और वो लोग उसको मुंह नहीं लगाते, पैसा है, लेकिन उसमें भी ये कहने की कोशिश की है कि मतलब आप जिस क्लास से हैं, पैसा आ जाए तो उसको सुविधा के लिए होता है पैसा, और उससे कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं, आप जहाँ हैं वहाँ बहुत खुश हैं।
1: सबसे बड़ा संदेश,
0: सबसे बड़ा जी।
1: तो ये बड़ा अच्छा आपने कंट्रास्ट इस तरह का उस फिल्म में लिया था। तो मुख्यधारा की मसाला फिल्मों से अलग ही फिल्में थी, दशकों तक कहाँ तक पहुंची होंगी फिल्में, आप क्या सोचती एक निर्देशक होने के नाते?
0: अब तो OTT आ गया है और OTT पे है तो काफी लोगों ने देखा उसको, लेकिन चूंकि हमारे पास बहुत बड़े वाले स्टार नहीं थे, इसलिए जब सिनेमा में आई तो उतना नहीं हो पाया, छोटे बजट की फिल्म थी। आजकल क्या है कि आपको फिल्म के प्रमोशन के लिए 10-15 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है छोटी से छोटी फिल्म का, तब लोगों तक पहुंचता है। हमारे पास तो उतना था नहीं, प्रोड्यूसर के पास उतना नहीं था, पहली फिल्म NFDC की थी, उनके पास भी उतना तो प्रमोशन के लिए नहीं था, लेकिन अब जब OTT पे आई है तो अब वो बहुत लाखों लोगों ने देखी है,
1: जन जन तक पहुंची है
0: OTT की मेहरबानी से।
1: लेकिन इसमें कलाकार तो बहुत अच्छे थे, और
0: नहीं, कलाकार अच्छे हो, फिल्म भी अच्छी हो, लेकिन लोगों को पता कैसे चले कि एक अच्छी फिल्म आ रही है, उसके लिए आपको प्रमोशन की जरूरत होती है, प्रमोशन के लिए पैसा लगता है, करोड़ों करोड़ों रुपए लगते हैं,
1: एक मार्केटिंग बहुत जरूरी है,
0: मार्केटिंग के लिए। जी जी,
1: तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि सीमा जी को किस तरह का सिनेमा पसंद है तो क्या कहेंगी आप? आपको व्यक्तिगत तौर पर किस तरह का सिनेमा पसंद है?
0: मुझे अलग अलग तरह का, मूड के हिसाब से। मैं वेस्टर्न सिनेमा देखती हूँ बहुत, और मुझे कभी रोमांटिक फिल्में पसंद आती हैं, कभी मुझे बहुत गंभीर फिल्में देखने का दिल होता है। ऑल टाइम हिट जो फिल्में हैं जैसे डॉक्टर जिवागो, और बहुत सारी ऐसी फिल्में, थ्रिलर हैं, हर तरह का सिनेमा मैं देखती हूँ, लेकिन शर्त है कि वो क्लासिक और अच्छा होना चाहिए, और फिर आपके मूड पे भी है, कभी कभी बचपन याद करने के लिए राजेश खन्ना जी का फिल्म देखने का मन करता है कि वो फिल्में, वो याद, वो दौर है ना
1: जी।
0: बाकी मुझे सत्यजीत रे का सिनेमा, ऋतिक घटक का सिनेमा, इंडियन में अपना ऋषिकेश मुखर्जी, ये इन लोगों का देख के आपको मन को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, और बहुत सहज इनका फिल्म मेकिंग रही है, बहुत सहज रहा है, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि ऐसे शॉट ले रहे हैं, वैसे शॉट ले रहे हैं,
1: लेकिन लाउड सिनेमा नहीं,
0: बिल्कुल
1: रहा
0: नहीं, नहीं, और नहीं। आप और हमारे इर्द गिर्द की कहानी, हमारे आसपास ही किरदार, आपको लगता है कि हाँ ये वो हैं, वो हैं हमारे अपने,

0: ऐसा सिनेमा जिसे आज रियलिस्टिक सिनेमा बोलते हैं वो मुझे पसंद है।
1: चलिए तो आपकी पसंद का एक गीत सुनते हैं, फिर जरूर आगे बढ़ाते हैं।
0: कल्याण जी आनंद जी का फिल्म मेरे हमसफर का किसी राह पे किसी मोड़ पे,
1: आइए सुनते हैं। बहुत ही सुंदर गीत।

0: सीमा जी, बात चल रही है आज आपके लेखन पर, आपके निर्देशन पर, आपकी पसंद की फिल्मों पर। एक स्त्री होने के नाते आपने कहा कि बहुत संघर्ष किया आपने, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट कभी मन में आया, इस तरह का लेखन, इस तरह की कहानी?
1: ज्यादातर तो मैंने स्त्री प्रधान ही फिल्म या सीरियल्स जो भी हैं बनाई हैं, जैसे अभी हार्ट तो वो ही थी, और अभी जो मैं बना रही हूँ पतंग मसाला, वो भी एक लड़की की कहानी है, वो भी स्त्री प्रधान ही है। और सीरियल्स जो बनाए हैं वो भी स्त्री के इर्द गिर्द ही ज्यादातर घूमते थे। अभी जो अवंतिका जो सीरियल बनाई है वो चूंकि इतिहास है, तो आप उज्जैन का इतिहास लिया है मैंने, जब कृष्ण आए उज्जैन सांदीपनी आश्रम में पढ़ने, तब से लेके विक्रमादित्य तक, तो उसमें स्त्री कैरेक्टर बहुत सारे। एक मैं अभी मैं एक प्रोजेक्ट लिख रही हूँ, वो है वामा नाम रखा है उसका, स्त्री को कहते हैं वामा
0: जी, जी।
1: तो मैंने वैदिक काल की जितनी विदुषी महिलाएं थी उन पे बना रही हूँ मैं, अपाला और ना भारती और मंडन मिश्र की जो पत्नी थी, तो उस तरह की जो कि वैदिक पीरियड में हमारी स्त्रियों कितनी ज्ञानी, लोपा मुद्रा और ये सब, तो उन पे बनाने का सोच रही हूँ मैं।
0: जी, तो कहाँ तक पहुँचा आपका ये प्रोजेक्ट जिस पर आप बनाने की सोच रही हैं? और
1: लेखन तक है अभी, और होपफुली इस फिल्म के बाद जो मैं अक्टूबर में शूट कर रही हूँ पतंग मसाला, उसके बाद वो शुरू कर देंगे।
0: क्या लगता है आपको, इस तरह का जब आप लेखन करती हैं तो आपको एक आत्मसम्मान, एक आत्मसुख, मतलब एक सुकून मिलता है?
1: देखिए, स्त्री होने के नाते मतलब स्त्री की संवेदना जो है उसको केरने में मुझे लगता है कि मैं काफी करीब हो जाती हूँ स्त्री के, तो मुझे फिर उसको पढ़ना और गढ़ना उस कैरेक्टर को आसान हो जाता है, क्योंकि मैं भी एक स्त्री हूँ और स्त्री के सारे संघर्ष मैंने देखे हैं। मेरी माता जी, मेरी मौसी, मेरे जो महिला दोस्त हैं उनकी जीवन को मैंने देखा है, तो उसे उतारने में बहुत आसान लगता है मुझे उसकी संवेदनाएं। और कई पुरुषों लेखकों ने, जैसे प्रेमचंद हैं, वो पुरुष होके भी उन्होंने स्त्री का इतना सुंदर, रेणु, टॉलस्टॉय ना, दोस्तोवस्की, गोरकी, इन्होंने बहुत खूबसूरती से स्त्री का, सबसे ज्यादा आपके शरदचंद, उन्होंने तो स्त्री का ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई स्त्री बैठ के लिख रही है।
0: जी, जिस तरह से उन्होंने लिखा, लगता ही नहीं कहीं कि एक पुरुष ये बात लिख रहा है, स्त्री की पीड़ा, स्त्री के संघर्ष को, स्त्री के जज्बातों को, स्त्री की फीलिंग्स को जिस गहराई में जाकर इन लेखकों ने लिखा। तो आप एक स्त्री होकर जब वो लिख रही है तो जाहिर है कि आप उस गहराई तक पहुंच पाती हैं जहां स्त्री को पहुंचना चाहिए।
1: जी, कोशिश करती हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकती कि उस गहराई में मैं पहुंच गई है मेरी लेखनी, लेकिन कोशिश करती हूँ, क्योंकि जितने संसार में स्त्रियां हैं सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबकी अपनी अपनी संवेदनाएं हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, अलग अलग समस्याएं, ढेर सारी समस्याएं, तो उनको कहने में मैं इतनी तो कॉशियस रहती हूँ, सचेत रहती हूँ, कि उसकी गरिमा को रखते हुए, स्त्री की गरिमा को रखते हुए, मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगी कि स्त्री के पक्ष में हूं मैं, लेकिन मैं पुरुष के विपक्ष में नहीं हूँ, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि संसार दोनों से चलता है, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि स्त्री अच्छी है तो पुरुष खराब है, ऐसा नहीं है। देखिए, पावर गेम है ये, पुरुष के हाथ में जब पुरुष सत्ता थी या है तो वो उसका दुरुपयोग भी कर देता था, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि बहुत सारे निर्देशक, मैं अपनी कला से संबंधित ही लोगों की बात चर्चा करूंगी, और लेखक इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने कभी अत्याचार नहीं किया स्त्री पे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मेरी माता का मैंने जो सम्मान देखा है मेरे पिता की नजरों में, उन्होंने तुमने ही बोला माँ, जबकि उनसे बहुत छोटी थी, लेकिन वो कम्मो जी बोलते थे, वो
0: जी।
1: कमल नाम था, कमल शबनम उनका तखल्लुस था, तो वो हमेशा कम्मो जी आप ये कर दीजिए, आप जनाब। तो हमने तो वो लोग देखे हैं जो स्त्री को इतना सम्मान देते थे।
0: आज एक लंबी बातचीत आपसे हम कर रहे हैं, लेकिन अब एक गीत हो जाए आपकी पसंद का।
1: जी,

0: आपकी लेखिकाएं भी स्त्री विमर्श पर लगातार चर्चाएं करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे एक अलग दिशा की ओर जा रही हैं। जब हम बात करते हैं स्त्री विमर्श पर, तो वही आपने कहा कि वो पुरुष विरोधी होकर जब लिखा जाता है तो स्त्री विमर्श फिर स्त्री विमर्श नहीं रह जाता।
1: नहीं, देखिए, आप है ना, संसार में चलाने के लिए ईश्वर ने पुरुष और स्त्री दोनों को बनाया। आप ये कहें कि पुरुष खराब है इसलिए हम शादी नहीं करेंगे, हम अकेले ही रहेंगे, तो हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें दोनों की जरूरत है। जैसे वो बड़ा क्लीशे सा शब्द है ना कि भाई गाड़ी के दोनों पहिए हैं,
0: बिल्कुल,
1: आप उनके बिना नहीं चल सकते। और अब पुरुषों को भी थोड़ा सा अपने आप को बदलने की बहुत जरूरत है कि अब स्त्री को नए परिपेक्ष में देखें, वो एक नए ढंग से देखें उसके सम्मान को, उसके काम के सम्मान को। मुझे जो स्वतंत्रता है ना, वो शब्द स्वच्छंदता नहीं बनना चाहिए
0: जी।
1: स्त्री का या पुरुष की स्वतंत्रता जो है वो अभी थोड़ा सा, मैं इस पे बोलना चाहूंगी कि स्त्री अभी जो स्वतंत्रता के नाम पे उच्छृंखलता जो हो रही है ना, वो स्त्री को और गुलाम कर रही है।
0: जी जी बिल्कुल सही कहा। और स्वच्छंदता शब्द तो चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, दोनों पर ये सही नहीं बैठता
1: है, दोनों के लिए गलत है। तो स्वतंत्रता के नाम पे आप कहें कि मैं ये खा लूं और मैं वो पी लूं, नशा कर लूं, उसमें स्वतंत्रता है, तो हम तो और गुलाम हो रहे हैं ना। ये स्वतंत्रता नहीं है। स्त्री की स्वतंत्रता आर्थिक होनी चाहिए, वैचारिक होनी चाहिए
0: जी,
1: है ना। ये दो स्वतंत्रता, वो अपना प्रोफेशन खुद चुने, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो, और अपना कोई भी चीज चुनने के लिए वो फ्री हो, ये होना चाहिए।
0: उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए
1: जी।
0: अपने निर्णयों को लेना सीखेगी, जिंदगी को किस ओर ले जाना है सही तरीके से। तो आपने इतनी फिल्में देखी हैं, आप फिल्मों की मुरीद हैं, सिनेमा लिखती हैं, सिनेमा को डायरेक्ट करती हैं। आज जो वर्तमान सिनेमा की हम बात करें, महिलाओं को जिस रूप में दर्शाया जा रहा है, आप उसे कहां तक सहमत हैं? जो स्थिति फिल्मों में स्त्री की दिखाई जा रही है, स्त्री खुद क्या इसकी जिम्मेदार है, या वहाँ कहीं ना कहीं मजबूरी या प्रोफेशन आड़े आता है?
1: समाज में मुझे क्या लगता है कि जब से शराब स्टेटस सिंबल बन गई है, तब से हास होने लगा है
0: जी।
1: अब हर फिल्म में आप दिखा रहे हैं कि स्त्री मद्यपान कर रही है या ये कर रही है वो कर रही है, तो ये कौन सी चीज बोलना चाह रहे हैं आपके, मतलब ये सामान्य होनी चाहिए ये चीज? इसके तो मैं खिलाफ हूँ। आप मुझे शायद पुराने समय का, पुराने विचारों का आप वो कर दें, लेकिन कोई भी चीज, औषधि भी अगर आपको मानसिक रूप से गुलाम बना रही है तो भी गलत है, है ना। तो किसी भी तरह का नशा, किसी भी तरह की ये चीजें, उसको ग्लोरीफाई करके, उसको बहुत ज्यादा आप हाईलाइट करके और अपनी हीरोइनों से आप, क्योंकि आम आदमी, एक किस्सा सुनाती हूँ मैं। हम लोग दिल्ली गए थे शादी के बाद, मैं और पुरी साहब। तो अब पुरी साहब तो आर्ट फिल्में और इस तरह की फिल्में थी, हम लोगों के पास कोई इतना पैसा तो था नहीं। तो मेरे एक वहां पर मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हम एक एड पुरी साहब से बनवा देते तो तुम लोगों का आना जाना फ्री हो जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा। एड में बहुत पैसा मिलता है, जो पूरी एक फिल्म में जो एक साल तक बनती है उतना एक दिन की शूटिंग में एड में मिल जाता है। तो मैंने कहा हाँ हाँ, बड़ी अच्छी बात है ये, तो पुरी साहब करेंगे? पुरी साहब बोले हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। मैंने कहा काय का ऐड है? बोले सिगरेट का। तो पुरी साहब बोले, उससे पहले ही मैंने कहा नहीं, पुरी साहब सिगरेट का ऐड नहीं करेंगे। पुरी साहब ने मुझसे पूछा कि क्यों नहीं करूंगा, मेरे कहने से पी लेंगे क्या लोग? मैंने कहा पुरी साहब, अगर आपके कहने से नहीं पिएंगे, ये आप तर्क दे रहे हैं, तो ये आपको इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? आप जिस भी फील्ड में हैं, आप कला फील्ड में हैं, आपको लोग देखते हैं, और इनको भी पता है कि आप कहेंगे तो 1000 लोग देखेंगे, 2 लोग तो पिएंगे, है ना। अब हमारे जो बड़े बड़े कलाकार हैं, वो अगर इस तरह के ऐड करते हैं और कहते हैं कि हम कोई समाज सुधारक नहीं हैं, समाज सुधारक आप हों या ना हों, आप सेलिब्रिटी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो बच्चा जो है 15 साल का से लेके 5 साल का बच्चा भी

0: बहुत बड़ी बात आपने कही कि एक कलाकार क्या कह रहा है, क्या विज्ञापन दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है, उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो
1: बिल्कुल
0: समाज में क्या फैला रहा है। तो सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा, और आपकी पसंद का ये गीत सुन लिया जाए।
1: जी, मेरी पसंद का गीत

0: सीमा जी, आपसे अगर मैं ये जानना चाहूं कि आपको कौन से कलाकार पसंद हैं इस इंडस्ट्री में, जो आपने बतौर एक्टर या एक गहराई के तौर पर पसंद किए, तो कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आप पसंद करती हैं?
1: दिलीप साहब, मोतीलाल जी, बलराज साहनी, फिर उसके बाद जो बचपन में हमारे हीरो हुआ करते थे वो राजेश खन्ना
0: जी
1: और देव साहब, धर्म जी, इस तरह के जो कलाकार हैं उन्होंने अलग अलग तरह का सिनेमा किया। अब आप देखिए, धर्म जी बिल्कुल घोर कमर्शियल फिल्मों में थे, लेकिन उन्होंने अनुपमा की, सत्यकाम उन्होंने प्रोड्यूस की,
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और कितनी फिल्में हैं जो उन्होंने ऑफ
0: शुरुआत की
1: बीट।
0: बहुत सारी
1: जी जी
0: फिल्में
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: ठीक उसी प्रकार जैसे जितेंद्र को जब हम देखते हैं तो गुलजार साहब की
1: जंपिंग
0: फिल्मों में,
1: जैक के नाम से जाने जाते
0: हाँ,
1: थे
0: लेकिन गुलजार साहब की फिल्मों में उनका एक
1: जी,
0: अलग रूप
1: अलग
0: देखने
1: रूप
0: को मिला।
1: थे।
0: और अगर नायिकाओं की बात करें तो कौन सी नायिकाएं आपको पसंद हैं?
1: नायिकाओं में मुझे वो बिचारी अपने सौंदर्य की वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे कोई कभी जिक्र नहीं करता है, जबकि वो कलाकार बहुत अच्छी थी अगर आप उनकी सिनेमा उठाएं, लेकिन उनके साथ एक दुर्भाग्य रहा कि वो बहुत हसीन थी,
0: मधुबाला
1: मधुबाला। उनकी
0: आएगा
1: सुंदरता पर चर्चा होती है, लेकिन आप जरा मुगले आजम उठा के देखें, आप मिस्टर एंड मिसेस 55 उठा के देखें, आपको वो रेंज मिलेगी, कहाँ कॉमेडी कहाँ सीरियस। वो कलाकार बहुत अच्छी थी, तो मधुबाला मुझे बहुत पसंद थी। नरगिस बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, मीना जी बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, वो उनका एक स्टाइल था। और शबाना बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं अभी के उसमें, करीना अच्छी परफॉर्मर है। बस ये है कि ये लोग स्क्रिप्ट अच्छी चुन लें तो ज्यादा अच्छा हो।
0: शशि कपूर के लिए भी हम यही पढ़ते थे कि वो इतने हैंडसम थे कि उनकी एक्टिंग पर तो बात होती थी लेकिन उनकी खूबसूरती के दीवाने ज्यादा थे।
1: जी
0: तो
1: जी
0: कई बार आपकी अति सुंदरता भी जो है आपके लिए, आपकी कला के लिए घातक हो
1: जैसे
0: जाती
1: अभी
0: है।
1: ऐश्वर्या राय कितनी खूबसूरत है, लेकिन वो परफॉर्मर बहुत अच्छी है, परफॉर्मर अच्छी है, मैंने उनकी कई ऐसी फिल्में देखी हैं, परफॉर्मर बहुत अच्छी है वो, लेकिन अब जिक्र ही नहीं होता है। आप उनकी सुंदरता में बात करते हैं कि उसमें खूबसूरत लगी ये करी वो सब, जबकि देखिए ना, मीना जी भी कम खूबसूरत थी क्या? उनकी अपनी अलग तरह की खूबसूरती थी, नरगिस जी की अपनी खूबसूरती थी।
0: बहुत सुंदर
1: जी
0: आंखें बोलती थी उनके,
1: जी
0: उनके होंठ बोलते थे जिस तरह से उनका।
1: परफॉर्मर मुमताज भी अच्छी थी। कुछ कलाकार डायरेक्टर के एक्टर होते हैं, आपने देखा होगा कुछ एक्टर्स जो हैं कुछ फिल्मों में बहुत खराब काम करते हैं और कुछ फिल्मों में ब्रिलियंट होते हैं, वो निर्देशक के कलाकार होते हैं। निर्देशक अगर आप देखिए ना, आप शक्ति सामंत की फिल्म कर रहे हैं, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म कर रहे हैं, फिर आप किसी और की फिल्म कर रहे हैं, तो उसमें परफॉर्मेंस में बहुत अंतर आ जाता है।
0: जी बिल्कुल, कि आपको निर्देशक ने किस रूप में पर्दे पर उतारा है,
1: निर्देशक
0: आप
1: कितना स्ट्रांग
0: स्ट्रांग
1: है
0: था।
1: अपने काम में।
0: बतौर निर्देशक अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको कौन सा ऐसा कलाकार पसंद है जिसने आपके निर्देशन में बहुत ही अच्छा काम किया आपकी नजर में?
1: मेरे निर्देशन में तो मेरे परिवार के ही दो लोग तो काम कर ही रहे हैं, अन्नू भाई और रंजीत भाई ने भी मेरी सीरियल में काम किया था एक्टिंग, जबकि वो एक्टर नहीं है। तो पुरी साहब आसान थे उनके साथ काम करना, अन्नू भैया के साथ काम करना थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि कई बार वो बड़े भाई भी बन जाते थे। बाकी तो मैंने अभी तक जितने लोगों के साथ काम किया है, चाहे सुरेश ओबेरॉय हो चाहे दिव्या हो, सब का बहुत अच्छा सहयोग मिला,
0: दिव्या भी एक बहुत अच्छी कलाकार
1: बहुत
0: हैं
1: अच्छी।
0: और जी
1: हाँ
0: बहुत ही संचिता कलाकार हैं।
1: जी, और मेहनती बहुत है, अपने काम पे फोकस है उसका और मेहनत करती है, चीजों को बार बार पूछना सवालों को कि ये कैसे है, ये कैरेक्टर क्या है, ये क्या है, क्योंकि हर को गांव का नहीं मालूम होता ना, गांव के क्या है वो आप निर्देशक या राइटर से ही पूछते हैं,
0: जी
1: वो
0: जी
1: गांव में तो नहीं रहे हुए होते हैं। तो वो उस तरह से ना उन लोगों का अपना जो होमवर्क है वो करने में पूरा टाइम बार बार फोन करके पूछना कि ये कर लूं क्या, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब एक कैरेक्टर गांव का होता है तो उनके जो मैनरिज्म है ना, उनके हाव भाव, जैसे गांव का कोई कंधे उचका के ना नहीं कहेगा, ये बहुत ही

0: जेस्चर है, तो वो ख्याल रखना वो निर्देशक का भी जरूरी है, कलाकार अगर उसमें गच्चा खा जाए थोड़ा कमजोर हो जाए तो निर्देशक का वो बनता है। लेकिन ये ऐसे कलाकार हैं जो होमवर्क जिसे बोलते हैं ना, कि फिर गांव का जो कैरेक्टर है वो कैसे उसके हाव भाव होंगे, कैसे हाथ उठा के बात करेगा, कैसे क्या करेगा, ये लोग होमवर्क बहुत करते हैं, इसलिए ये इतने
1: स्टैब्लिश कलाकार हैं, अच्छे और परिपक्व कलाकार हैं, जहां किसी भी फिल्म में इन कलाकारों ने कभी आपको बोर नहीं किया, जैसे हम एक सामान्य शब्दों में कहें, जिसे कहते हैं कि निरुत्साह नहीं किया, हमें कभी निराशा नहीं हुई इन्हें देखकर कि ये क्या एक्टिंग कर,
0: कमजोर नहीं पड़े ये अपने अपने किरदार में,
1: क्योंकि अपने काम को इतना मजबूती के साथ इन्होंने किया है। चलिए आपकी पसंद का गीत सुनते हैं और फिर एक सवाल आपसे पूछते हैं।
0: मदन मोहन जी का संगीत में एक गाना मुझे बहुत पसंद था, दुल्हन एक रात की, मैं लता जी ने गाया, सपनों में अगर मेरे तुम आओ तो मैं सो जाऊं।
1: बहुत सुंदर गाना है, चलिए तो सुनते हैं यही गीत।

0: बहुत सुंदर गीत सीमा जी आपने हमें सुनवाया, और इससे पता चलता है कि क्लासिक जो है संगीत आपको पसंद है और जो रूह को सुकून दे रहा है।
1: जी
0: आपकी 2025 में एक आत्मकथा आई किताब के रूप में, उसके बारे में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। मैं आप ही से सुनना चाहती हूँ उस किताब के बारे में, उस आत्मकथा के बारे में।
1: हाँ
0: बहुत ही सुंदर उसका
1: यूं
0: शीर्षक है,
1: गुजरी
0: गुजरी
1: है अब
0: अब
1: तलक।
0: तलक।
1: जी, तो किताब का ख्याल मुझे ऐसे आया था कई साल पहले। क्या हुआ था कि पूरी साहब से बिछड़ने के बाद आई लॉस्ट माई चाइल्ड, तो

0: उसमें मेरे भाई, मेरी माता जी, वो सब इतने दुखी थे कि मेरे दुखी होने का मुझे समय नहीं मिला, ना अवसर मिल रहा था, क्योंकि सबको रोता देख के अगर मैं भी रो रही होती तो उनको संभालता कौन।
1: जी
0: तो इसलिए मैंने एक फसाड, एक ना एक आवरण सा ओढ़ रखा था कि कोई बात नहीं, ये जीवन है, ये भी समय निकल जाएगा, और ऐसे करके। लेकिन मेरे अंदर ना एक दावानल चलता रहता था। आपको एक कोना चाहिए जहां आप रो सकें, जहां आप कथार्सिस, जिसे हम लोग बोलते हैं, ये एक एक रेचन हो जाए, अंदर से जो गुबार है वो निकल जाए। तो मुझे, मैं सबके बीच में घिरी हुई थी, सारे मेरे दुख से दुखी थे,
1: जी
0: उनको मैं अपना दुख दिखा के दुखी नहीं होना चाहती थी। तो मैंने कहा कि कलम ही एक ऐसा मेरा साथी है जो मैं अकेले में जिसको लिख सकती हूँ, और अपने उद्गार पेपर पे ना उसकी स्याही जो है मेरे आंसुओं की तरह उसे निकालूं।
1: जी
0: तो मैंने अपने बच्चे को एक खत लिखा जो चला गया कि भाई तुम, मेरी कोख इतनी खराब थी कि तुम नहीं रह सके उसमें। तो फिर उससे मैंने कई सवाल पूछे कि तुम क्यों नहीं आना चाहे, मैंने तो तुम्हारे लिए बड़े सपने देखे थे, मैंने तो तुम्हारे लिए सारा कुछ वो करके रखा था कि दुनिया में ऐसे तुम्हें वो करूंगी, ऐसे तुम्हारी तरबियत पालन पोषण करूंगी, कैसे भी अभाव होंगे, कैसे भी कुछ होगा, संघर्ष करूंगी, लेकिन तुम्हें मैं सारे वो सपने जो तुम देखोगे उनको पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो वो सब मैंने खत लिखा उसको। फिर भी सवाल जब वो नहीं हुए तो मैंने बच्चे की तरफ से माँ को एक खत लिखा कि मैं क्यों नहीं आया।
1: जी
0: तो ये जब लिखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये आत्मा को बड़ी, मेरे कथार्सिस हो गया, एक दर्द जो है निकल गया। तो मुझे ऐसा लगा कि इतना जो जिंदगी में झंझावात झेले हैं, जिंदगी में जो अनुभव अच्छे बुरे खट्टे मीठे, थिएटर कंपनी के बाबूजी की जो लोगों ने जाना नहीं है, लोग ये जानते पारसी थिएटर हुआ करता था, नाटक मंडलियां हुआ करती थी, लेकिन उनकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, उनकी स्त्रियां क्या थी, वहां पे स्त्रियों की क्या दशा थी, जो स्टेज पे समाज से उपेक्षित थी, स्टेज पे कमाती थी, लेकिन फिर भी वो पुरुष के सत्ता के अधीन थी वो। तो वो सब मैंने उतारने के लिए मन बनाया, और ऐसे मैंने मैंने कहा ये सिर्फ सारी चीजें कहानियों में नहीं आ सकती, क्योंकि इतनी सारी कहानियां कहाँ लिखूंगी मैं, अपनी आत्मकथा ही लिख दूं, उसमें तो सारे वो कैरेक्टर हैं, वही बिब्बी हैं, वही बुग्गी हैं, और वही चंदा हैं, और वही शरीफ भाई हैं, और वो जो नाटक कंपनी के चरित्र हैं सारे हैं वो, उनको उतारा जो थे हमारी नाटक कंपनी में, क्या मेरी माँ थी उनका संघर्ष, क्या मेरे फादर थे उनका संघर्ष, हमारा संघर्ष के इतने अमीर माता पिता के संतान होके, आज देखिए जब हमारा थिएटर कंपनी जो हमें इतना पैसा और खाना देती थी, उसके बाद जब सिनेमा आया तो थिएटर कंपनियां बंद हो गई,
1: जी
0: भुखमरी आ गई है
1: जी
0: ना,
1: बिल्कुल
0: सारी थिएटर कंपनियां बंद हो गई। एक जमाने में जिस फिल्मों ने, सिनेमा ने हमारी रोजी रोटी छीनी, आज वो सिनेमा हमें रोजी रोटी दे रहा है। तो ये पूरा जो ग्राफ है जिंदगी का, ये मैंने उसमें लिया, और लोगों को शैली भी बहुत पसंद आई, कहने का स्टाइल पसंद आया।
1: काफी चर्चित रही ये किताब, और 2025 की सबसे चर्चित किताबों में से एक
0: जी
1: किताब रही ये
0: जी
1: यूं गुजरी अब तलक, और उसमें मुझे लगता है कि हमने
0: साहित्य
1: आपको
0: तक ने तो उसको 2025 की टॉप 10
1: में
0: बुक में लिया।
1: शामिल किया,
0: जी
1: और काफी लोगों ने आपको उस वक्त जाना पहचाना, आपके दर्द को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। तो सीमा जी आगे भी आप यूं लिखती रहें, ये शुभकामनाएं हम आपको देते ही हैं। चलिए एक और गाना हो जाए आपकी पसंद का।
0: जी

0: आगे की नए प्रोजेक्ट्स आपके क्या क्या हैं, बस ये जानना चाहते हैं।
1: जी वो फिल्म बना रही हूँ, दो सीरियल का है वो कर रही हूँ, एक दो महिलाओं पे डॉक्यूमेंट्रीज हैं जी। एक जगह है जहाँ पर गांव से महिलाएं जो हैं वो नदी के पार करके जाती हैं, कुछ भी नमक भी खरीदना हो तो उनको नदी पार करनी पड़ती है। और नदी कैसे पार करनी पड़ती है, टायर ट्यूब होते हैं ना उसमें बैठ के और अपनी चप्पलों को चप्पू बना के वो नदी पार करती हैं।
0: अरे
1: तो वो मैं बना रही हूँ, अभी पानी थोड़ा सा नदी में कम है तो इस वजह से थोड़ा अब मैं सर्दियों में जाके, तो ये सारी चीजें मैं चाहती हूँ कि मैं जितना भी काम करूँ मेरी जो महिलाएं हैं, मैं चूंकि स्त्री हूँ तो मैं स्त्रियों पे ही काम करना चाहती हूँ।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, तो इस लाइन में आने वाली स्त्रियों को आप क्या कहना चाहती हैं, युवा स्त्रियों को जो इस लाइन में आना चाहती हैं बतौर राइटर, बतौर निर्देशक, बतौर एक्टर?
1: देखिए कोई भी विधा, जैसे अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, एक कोई पत्रकार हैं वो एक्टिंग में चले गए तो लोग उनको डिफेंड करने लगे कि भाई लोग सीखते सीखते सीखेंगे। मैं इसके खिलाफ हूँ। एक तो जो कलाकार

0: और आता है जो जैसे अभी एनएसडी से ट्रेन एक एक्टर आ रहा है
1: जी,
0: ठीक है, आपने उसकी रोजी रोटी छीन रहे पहली बात, जिसने इसी को पढ़ा है जो यही कर रहा है, और फिर जब करोड़ों रुपए एक फिल्म में लगते हैं तो वहां पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई रोटी बनाना है कि धीरे धीरे सीखेंगे।
1: हाँ,
0: नहीं,
1: तो सीखने की प्रक्रिया भी चल रही है।
0: ये प्रक्रिया नहीं है, करोड़ों रुपए आप पे लगते हैं तो प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, आपको ट्रेंड होना पड़ेगा। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगी कि देखिए, दो तरह से आप सिनेमा की तरफ आकर्षित होते, ग्लैमर और पैसा। तो जब ये दो चीजों से आकर्षित होके आप आते हैं तो सक्सेस मिलने के चांसेस जो हैं आपको 5% होंगे। लेकिन आप कलाकार हैं, आप पढ़ते हैं, आपने सिनेमा पढ़ा होता है, थिएटर पढ़ा होता है, आपने लिटरेचर पढ़ा होता है, म्यूजिक पढ़ा होता है, ये सारी चीजें जब आपने की होती हैं, थिएटर किया होता है और टेक्निक जानते हैं, मतलब ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे एक डॉक्टर बिना MBBS किए डॉक्टर, हम उससे इलाज नहीं करवाएंगे, एक इंजीनियर से बिल्डिंग नहीं बनवाएंगे जब तक कि वो नहीं है, इसी तरह कलाकार को, कला क्षेत्र को आप ऐसे मत सोचिए कि कोई भी आके कर ले, उसके लिए आपको ट्रेंड होना बहुत जरूरी है, पढ़ाई पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप कुछ बनेंगे।
1: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी आपने एक संदेश युवा आने वाली लड़कियों को खास तौर से दिया है, जो केवल शारीरिक सौंदर्य के बल पर आना चाहती हैं और दूसरी चीजों को मद्देनजर नहीं रखते हुए काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि किसी भी लाइन में जाने से पहले आपको वहां के लिए पढ़ना और गुनना बहुत जरूरी है खुद को। तो बॉम्बे टॉकीज में आज सीमा जी आपने विविध भारती के लिए अपना अमूल्य वक्त निकाला है, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
0: नहीं, विविध भारती तो जिंदगी में जब हम बच्चे थे तब से जुड़ा हुआ है हमसे, और जहां से जाएंगे तो विविध भारती सुनते हुए ही जाएंगे, कोई ना कोई गाना चलता ही रहेगा।
1: जी, तो चलिए एक और गाना जान लेते हैं इस कार्यक्रम का।
0: जी, एक गाना मजरू साहब का है, मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से, LP का म्यूजिक है, ना जा अब कहीं ना जा,
1: दिल के सिवा,
0: दिल के सिवा।
1: क्या बात है।

0: बॉम्बे टॉकीज में आज दोस्तों हमारे साथ थी जानी मानी लेखिका, निर्माता और फिल्म निर्देशक सीमा कपूर। और अब बॉम्बे टॉकीज में आज इतना ही। मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत, नमस्कार।
1: ये था जानी मानी लेखिका, निर्देशिका और निर्माता सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
2: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमिदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल की 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
3: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में

0: गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरो स्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
2: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
3: इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट।
0: हुरमुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमरीका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसेलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले 2 दिन में डिसेलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसेलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंताएं बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में 1 व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पत्नी चिनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चिनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा HD कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन

0: करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में दो दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT ऊषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ होर्मुज जलडमरो मध्य पर अमरीका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग।

ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है देवव्रत मिश्र का सितार वादन। वाराणसी के प्रतिष्ठित संगीत घराने में जन्मे देवव्रत मिश्र ने अपनी मां प्रमिला मिश्रा से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और अपने पिता पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र के मार्गदर्शन में सितार की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार देवव्रत मिश्र ने ठुमरी परंपरा और बनारस घराने के गायकी की विशिष्ट बारीकियां अपने दादाजी ठुमरी सम्राट पंडित महादेव प्रसाद मिश्र से सीखी। इस प्रभाव ने उनके सितार वादन को एक अनूठी पहचान दी।

0: हरवादन की शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएट और गोल्ड मेडल के साथ संगीत प्रवीण देवव्रत मिश्र आईसीसीआर के सूचीबद्ध कलाकार भी हैं। उन्होंने भारत और विदेशों में कई प्रतिष्ठित मंचों पर सितार वादन की सफल प्रस्तुतियां दी हैं। इनमें तानसेन संगीत समारोह, संकट मोचन संगीत समारोह, सप्तक संगीत समारोह और अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला प्रमुख हैं। उन्होंने अमेरिका, कनाडा, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे कई देशों में अपने सितार वादन से संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया है। देवव्रत मिश्र को नेशनल यूथ फेस्टिवल अवार्ड, स्वरमणि अलंकरण, काशी रत्न संगीत शिखर सम्मान, बीएचयू कौस्तुभ सम्मान, जर्मन बेस्ट जैज क्रिटिक अवार्ड और वर्ल्ड म्यूजिक विजनरी अवार्ड यूएसए से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार प्रशांत मिश्र। देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का आरंभ राग जोग से कर रहे हैं। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक टुनाइट वी ब्रिंग यू सितार रिसाइटल बाय देवव्रत मिश्रा। Born into distinguished music gharana of Varanasi, Devbrat Mishra received initial music training from his mother Pramila Mishra and underwent formal training in the sitar under the guidance of his father Padmashri Pandit Shivnath Mishra. An A-grade artist of Akashwani, Devbrat Mishra received distinctive lesson of Thumri tradition and vocal style of the Banaras gharana from his grandfather, the great Thumri exponent, Pandit Mahadev Prasad Mishra, an influence that lent a unique identity to his sitar playing. Postgraduate in sitar and Sangeet Praveen with gold medal, Devbrat Mishra is also an empaneled artist of ICCR. He has delivered successful sitar performances on numerous prestigious platforms, both in India and abroad. Notable among these are the Tansen Sangeet Samaro, Sankat Mochan Sangeet Samaro, Saptak Sangeet Samaro, and the International Dhrupad Mela. He has captivated audiences with his sitar recitals in many countries, such as USA, Canada, Spain, France, Italy, and Germany. Devbrat Mishra has been honored with the National Youth Festival Award, Swarmani Alankaran, Kashi Ratna, Sangeet Shikhar, BHU Kostub Samman, German Best Jazz Critic Award, and the World Music Visionary Award, USA. In tonight's program, accompanying him on tabla is Prashant Mishra, an A-grade artist of Akashwani. Devbrat Mishra is beginning his sitar recital tonight with Raag Jog, Vilambit and Dhrutgat set to Teen Taal.

0: आप सुन रहे थे राग जोग। देवव्रत मिश्र अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग गोरख कल्याण में सितार वादन। मध्य लय रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत तीन ताल में है।
1: यू जस्ट हर्ड राग जोग। देवव्रत मिश्रा इज नाउ प्रेजेंटिंग सितार रिसाइटल इन राग गोरख कल्याण। मध्य लय इज सेट टू रूपक ताल एंड द्रुत इज इन तीन ताल।

0: राग गोरख कल्याण के बाद देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का समापन दादरा ताल में निबद्ध राग मिश्र पीलू में धुन से कर रहे हैं।
1: आफ्टर राग गोरख कल्याण देवव्रत मिश्रा इज कंक्लूडिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विथ धुन कंपोज्ड इन राग मिश्र पीलू सेट टू दादरा ताल।

0: ये थी सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र पीलू में धुन। कलाकार थे देवव्रत मिश्र। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आपके साथ तबले पर संगति की प्रशांत मिश्र ने। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर रिकॉर्ड इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: दिस वॉज धुन इन राग मिश्र पीलू प्लेड ऑन सितार बाई देवव्रत मिश्रा In tonight's national program of music, accompanying him on tabla was Prashant Mishra. Earlier recorded at Akashwani Varanasi, this program came to you from Delhi station of Akashwani.

0: पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गाताद्र रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
1: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र अडप्पा बीजे अनुष्ठान आज पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 बजे से अमरीका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಹಾಸನ FM ಕೇಳುಗರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲಯದ ಇಂದಿನ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಸಮಯ 11:05. ನಿಲಯದ ನಾಳಿನ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:55 ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಆತ್ಮೀಯ ಶ್ರೋತೃ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ AM ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.